0: स्वास्थ्य बीमा सुविधा वेबसाइट दृष्टि आई डॉट ओ आर जी फोन नंबर 0124-3552-324-3552
1: सभी तरह की दृष्टि सभी तरह

मगरी से किसी मुश्किल से आते हैं कुछ फिर कुछ शीलों का रहता है अपने परिवार से और जो नाम आदि बारे में सोचें इसके जो बारे में हम तो सोचते हैं ना पहले किचन का नाम आदि बारे में सोचें नाम मैं जो आदि बारे में सोचें चलिए तब सरकार ने किसी के काम पर सरकार को इस तरह सरकार तो किसी तरह सरकार में हमारे

तारीख की छोड़ी हिंसा को जोखिम में नेपाल चीन और सीमा में दस अर्ब भन्दा बड़ी को क्षति चार प्रमुख लक्षित सामान बढ़े व्यावसायिक क्षति कांग्रेस में 63 सदस्य प्राध्यापक में पड़े पंद्रह महाधिवेशन में भाग लेने पाने भोटो पशी लगी प्रभावित का

0: होता सच्चा राष्ट्र निर्णयका कुरा बुझौ सुनौ अनि खुलेर कुरा गरौ खुलेर सुनौ खुलेर सुनाऊ।
1: BBC मीडिया एक्शन को सहयोग में रेडियो जुम्पा का

Sofa, स्वास्थ्य पुनर्जन संख्या मंत्रालय, एपिडेमोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा और राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केंद्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपाल।

0: because I need something.
1: रेडियो गुरुबाबा एफएम द्वारा जारी प्रणाली संदेश।

लगू तो बाहर नहीं रू बाहर निस्कर तो ओ सब जाना लाइन लागे रे बस अब हम ही पीटी खेले एक दुई तीन चार

बड़ी अच्छी बारी नहीं सकता मेरी सब जाना एक ठीक लाइन ला कर बस अब हम ही पारे खेलने एक दुई एक दुई

0: पाँचजनाको सत्कार गर्नको टिमहरू समेक सय उनसत्तरी जना उहाँहरू एक सय सन्तानब्बे थालिङमा सत्तरी इटौनमा 363 गोर्खामा 75 तनहुमा 38 नवलपरासी पूर्वमा 222 नवलपरासी पश्चिममा 221 जनको सन्तान पर्वा अन्ठानब्बे सबको काठमाडौँ प्राधिकरण सिधेर पाठक अपडेट अनुसार बैहार तथा विपदको कारण 4,996 जना सम्पर्कविहीनबाट सम्पर्कविहीन बिनामा रसुवाको 1,967 नुवाकोटको 2,340 विदेशी नागरिक 590 सडक विवरणमा उल्लेखिएको आवश्यक करिब 100 जना सुरक्षा कर्मी र कर्मचारीहरू सम्पर्कविहीनहरूबाट उसको भास्करी नगरपालिका बाराबंकी नगरपालिका टोडाका विष्णु प्रसाद थारू विपत्ति महपर्वकवासीमा पसिएको छ।
1: विमान पकड़ना से हमारे प्रत्यक्ष है परस की भीड़ पड़ना से बात हुआ तो विशेष ये मौसम के बारे में कहा करते हैं। हम तो हर गाँव के मरण की मैंने की समझ की कोई मछली न मारे जाए हो लालच के पकड़ा मार कोई चाशू नहीं मारे जाए हो इस वजह की वजह प्राण ले गई तो एक तो हो सकी विमान पकड़ना से तो सरदार प्रधानमंत्री जी को जो डाइम हुई तो मैंने समझे आती थी फिर से फिर मैंने प्रधानते भगवान मां उससे नहाज के ज्यादा ज्यादा बहुत पता नहीं जाता हो जैसे वो हाथ बात हो जैसे वो घोड़ा नहीं हो जैसे वो घोड़ा बात हो जैसे वो हाथ नहीं हो इसके लिए से अपन मरण के इन चीज पर जान लाए हो कि ये वो मूल करके वो अपने गुरु मां हाथ बात हो पूरी कर गया तो कसी के हुआ लेके जहाँ है उनके हमारे गांव जो लड़का रहा है तो भागत भागत भागत भागत मतलब फसल तो बात है जी तो और ये करो नए पता लागत हमारे कहा कि नहीं अब आदमी हाँ लगे क्या थे लागत के नए लगा तो मेरे पूरी लड़का तो पता लगता है घटना लाई हो लेकिन भी पता नहीं कहाँ से पता है उसके सुबह से आप पहले कुछ दिन तो अपना बढ़िया अपना पानी ध्यान पड़ अब साथ में हमारी हर चीज

निशाद रोग बसेपछि स्वस्थ जीवन अपनाई। निशाद रोग झट्टबाट ज्ञानी गृह जीवन खटाउँछ। सक्रिय खाना खाई, व्यायाम, सतर्कता, धुम्रपान गरिरहेपछि तुरन्तै हालाकी निर्णय गर्ने जीवन अपनाई। रेडियो

के विकास कार्य में ले जुड़ा प्रस्ताव। भारतीय स्थान वापसपति दशको जिला दर निर्धारण समिति को बैठक जिला का उत्पादित वस्तु मूल्य निर्धारण करने किसान ने स्वयं न्यूनतम मूल्य में बिक्री करना बाध्य।

ये किलर के सिर्फ विकास कराए हुए कॉलेजों में कपाड़ और पकड़ दे किलर के सिर्फ विकास और देखिए

0: चाहूँ चाहिए इकोटेक्नोलॉजी तथा रोग नियंत्रण भाषा का राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केंद्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल
1: सहकार्यमा

0: भाई आज उस प्रकार में
1: सदस्य तथा साथी भाई बहनों को और को प्रतीक्षा सदन तथा उत्तर कार्य निरंतर रूप में जारी रहने से भरने मैं अपना विश्वस्त करना चाहूँगी।
0: उत्तर प्रदेश राज्य तेलंगाना संघीय सरकार ने स्थानीय प्रदेश ट्रांसफर संबंधी निर्णय को भी आज जाने को छह सरकार ने जिसको कामयाबी सकेगी। राष्ट्रपति
1: राज्य का स्थानीय

पीएमओ परिचय राज्य के लिए असंतुष्टि या आक्रोश व्यक्त करना सत्ता पक्ष के देखते हुए प्रधानमंत्री आलोचना करेंगे। प्रधानमंत्री भाई ने एक चेयरमैन ऑफ संसार

0: சொல்ல பயணம் இரண்டு பயணங்களுக்கு சாப்பிட்டு அதில் சென்றரை கண்டறிகிறது வாகனம்
1: राष्ट्रपति रामचंद्र कोविंद ने आफ्नो कार्यालयमा जिज्ञास राखेको स्वतन्त्रता भन्ने बताए राष्ट्रपति भएरले तपाईँलाई भएको सबै सानो सम्पत्ति शक्तिमै छैन सबै